0: चालीस में ली थी सर।
1: Good. 790 on Newport with the fire truck drivers 4-1.